रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी को कम्प्लिट रेंज, 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई, नागरिकता भए पुग्छ। हरेक घरको खुशी घर घरमा एलजी। एलजी लाइट्स गुड।

नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो नचाउने गाना। नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो नचाउने गाना।

गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: रेडियो एनआरएन 99.1
1: नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो फुलबारी।

रेडियो एन आर्यन 99.1 मेगाहर्ट्ज। नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो मज्जाको म्युजिक।

0: गरिमा विकास बैंक लिमिटेड एक्सेस टू ऑल
1: रेडियो एनआरएन 99.1
2: नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो साझ पख।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: रेडियो एनआरएन 99.1 समयको ख्याल राखौ। 5 बज्यो।
1: नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो शुभ प्रभात।

0: अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे गणेश वंदना। ये भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के शिष्य, इन्होंने उनसे शिक्षा ली और इनके गुरु पंडित रामेश्वर प्रसाद से इन्होंने शिक्षा ली। आइए इनसे दूसरा भजन सुनिएगा, श्री रामचंद्र कृपाल भजन।
1: आइए ये भजन बहुत लोगों ने अपने अंदाज में गाया है, मैं भी अपने अंदाज में गा रहा हूं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा।
2: नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो NRN 99.1 मा यो हो शुभ प्रभात।